0: हंगार
1: अंगार दो मेंदुर कोरी एकार गड़ फणा रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूं आदि बुद्ध दो केरे मेंदम बार गड़ तेरी हूं
0: हंगार
2: हम एकनी दिवे राज्य क्याडू
3: दिवे बहु के फोंग आयुद्मा शौगर वाफरात का खास को दिवे राज्य डूंगे दिस्तनी
4: बसवार

0: हंगार
1: हंगार दो मेंदुर कोरी एकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होगेरे मेंदमो बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हमें कनी दिवे ही राज्य क्या डूं